0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: ट्रू स्पिरिचुअलिटी कंसिस्ट्स इन सोइंग द सीड्स ऑफ लव इन द हार्ट्स ऑफ पीपल एंड फैसिलिटेटिंग द ब्लॉसमिंग ऑफ पीस एंड डिवाइन लव अमंग ऑल मैनकाइंड.

तू दाना बिना साचा सिर मेरा, गुरमत दे भरोसा तेरा, तन मह मैल नाही मन राता, गुरबचनी सा शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया।

पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ। जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास, जाहे सवार

तीन अवस्था कहे वखियान, तुरियावस्था सदगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई। बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महन रस बुझाया। दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहै सुखाली। बाजी यो संसारो, लब लोभ मुझ कूड़ कमावै, बहुत उठावै पारो। तू काया मैरुन दी देखी, ज्यों तारी

हाँ तुझे आखा मेरी काया तू सुन सिख मारी निंदा चिंदा करै पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियाड़े करै चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रही है छुट्टड़ हुई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जाकछ लिया ता मन भला पाया हालत ना सोबा पलत ना ढोई अहला जन्म गवाया हाँ खरी दोहेली होई बाबा नानक।

केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नागपुली में आए, केते पंख उड़ाए। हाट पटन बिज मंदर पन्ना कर चोरी करे आवे, अगो देखे पिछो देखे तुरते कहां छपावे। तट तीर्थाम नवखंड देखे हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा कठी मैं मन जारा। जेता

आवे जाए। आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया। किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नौ निध पाए। गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से धनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए। हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ। आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मत उत्तम होए, सहजे सही समावै सोए। दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटुंब गृह मोया माए, मन मुख अंदा आवै जाए। हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुरसबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए। गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, गुर सेवा जब चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट न होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई। ए मन मेरे परम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ। सतगुर सेवै ऐसे महापुरुष संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे। हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे। सतगुर सेवै सदा मन दासा, हम मैं मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकरवासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारिंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी। गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, सतगुर मिलै वड़ भाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग,

गुरमुख नाम निदान ले दरगह ले छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए गुर का शब्द ना चीने ओ फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अंदर भक्ति रतिया हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हों मैं तजे विकार जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेई अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण संभलै साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससरै पेईए पिर वसै कहो किद बिद पाईए आप निरंजन अलख है आपे मिलाईए रहाओ आपे ही प्रभ देहे मातु हर नाम ते आई है वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाई है हों मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाईए सब आपे आवरदा आपे नाए लाईए मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान आने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा मत मलीण प्रगट पई जपना मुरारा सिव सकत मिटाइया चूका दियारा तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईए संत जना जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है

जब गुर मिलया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया। सतगुर पगतूर जिन्ना मुख लाई, तन कूड ते आगे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुखी उज्जल पाई। गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुख हर आप तरावै। गौड़ी गुआरे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रहया बनवारी, हर आपे तप तापै लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर रहाओ। हर आपे शब्द सुरत तुन आपे, हर आपे वेखै विकसै आपे, हर आप जपाए आपे हर जापे। हर आपे सारंग अमृत तारा, हर अमृत आप पिया वनहारा, हर आप करे आपे निस्तारा। हर आपे बेड़ी तुलहा तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे नानक पावे पारा। गौड़ी बैरागण महला चौथा, साओ हमारा तू तनी, जैसी तू रास दे तैसी हमले, हर नाम जय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे। हमन जारे राम के हर वणज करावे।

नित दिन सरात लालच करे भरमै भरमाया वे गार फिरै वे गारिया सिर पहाड़ उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए नित हर गुण गावै हर नाम समाए रहाओ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अरसव माया कै बंदे कै डान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद कीचै बहु भांत कर माया कै ताई जा लाहा दे ता सुख मने तोटै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागै जिस हरे आप कृपा करे सो वेचे सिर गुरिया गै जन नानक हर रस तृप्त आ फिर भूख ना लागै गौड़ी बैरागण महला चौथा हमरे मन चेत हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चेत हर बहुत प्यारा हों कुर्बानी गुरे अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा।